बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:09 है, स्टूडियो की घड़ी का समय 107 FM रेनबो पर। शर्मिशा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप, जिसे आप सुनते हैं हर रोज इसी जगह इसी चैनल पर इसी समय। जी हाँ, और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून किया 107 FM रेनबो के अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर भी हमारे प्रसारण इस वक्त आप सुन पा रहे हैं। और एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ शुरुआत हुई आज के इस कार्यक्रम की। ऐसे ही लाजवाब गीत संगीत का साथ होगा इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ बातें तो बहुत सी होंगी इस कार्यक्रम में। भाई आखिर हो ही क्यों ना, क्योंकि नाम ही है कार्यक्रम का नॉनस्टॉप गपशप, जिसमें नॉनस्टॉप गपशप के साथ ढेरों खूबसूरत गीत संगीत का साथ भी रहता है इसी कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं आपके रेडियो दोस्त शर्मिशा के साथ। अच्छा चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको बाज बटालियन के बारे में। जी हाँ, क्या आपने सुना है इस बटालियन का नाम? तो बात करूंगी एक ऐसे बटालियन के बारे में जिसने हमारे देश के वीर जवानों के साथ बल्कि पंख से पंख मिलाकर हमारे वीर जवानों के साथ देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी ठानी है। और चलिए बात करूंगी और भी इस बटालियन के बारे में, आखिर किस तरीके से काम करती है ये बटालियन, और आखिर देश की रक्षा करने के लिए आखिर क्या क्या कर रही है ये बटालियन जिसका नाम है बाज बटालियन, बताऊंगी ये सारी बातें। लेकिन फिलहाल एक प्यारा सा गीत तो हो जाए, है ना?

10:15 है स्टूडियो की घड़ी का समय और संग है आप शर्मिष्ठा के सुन रहे हैं नॉन स्टॉप गपशप जिसमें बातें होती हैं नॉन स्टॉप और बीच बीच में सुमधुर गीतों का साथ भी रहता है इसी कार्यक्रम में। और इस गीत को सुनाने से पहले मैं बात कर रही थी बाज बटालियन को लेकर और ये भी बताने वाली थी कि भारतीय सेना में आखिर इस बटालियन का योगदान आखिर क्या करने वाला है, जी हाँ, क्या रोल रहेगा इस बटालियन का, किस तरीके से ये बटालियन काम करने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस बटालियन को लेकर जिसका नाम दिया जा रहा है बाज बटालियन। भारतीय सेना अब भविष्य की जंग के लिए खुद को तेजी से तैयार कर रही है। इस दिशा में सेना ने बाज बटालियन नाम से खास ड्रोन यूनिट बनाने का फैसला किया है। इस बटालियन का काम सीमा पर लगातार निगरानी रखना, दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी जुटाना और ज़रूरत पड़ने पर सटीक कार्रवाई में मदद करना होगा। और ये यूनिट सेना की आर्मी एविएशन कॉर्प्स के तहत काम करने वाली है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि हमारे देश के सैनिकों की संख्या जो है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ी हुई संख्या के साथ हमारे देश के नौजवान सैनिक और अच्छे तरीके से हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल तो सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत और उसके बाद बात करेंगे और अलग अलग विषयों को लेकर, है ना, क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है नॉन स्टॉप गपशप और नॉन स्टॉप गपशप करते रहना ही तो काम है इस कार्यक्रम में हमारा, और आपका काम है सुनना और जी हाँ मनोरंजन लेते रहना इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो फिलहाल अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज़ में ये गीत।

आज है जुलाई महीने की पहली तारीख और आज के दिन को लेकर, जी हाँ, आज के खास दिन को लेकर बात न करें ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ एक कारण से नहीं बल्कि बहुत सारे कारणों से जाना जाता है और डेडिकेटेड है बहुत से लोगों के नाम, यानी कि कुछ एक खास वर्ग हैं जिनके नाम डेडिकेटेड है आज का दिन, यानी कि 1 जुलाई। तो एक ऐसे वर्ग के बारे में सबसे पहले बात करते हैं जिनके बारे में हम आम तौर पर बात नहीं करना चाहते, सोचना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही हमारी जो तबीयत है वो थोड़ी सी नासाज होने लगती है, जो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है हमारी सेहत, तो सबसे पहले हमें उसी वर्ग का नाम जो है वो याद आता है, ना चाहते हुए भी। जी हाँ, ना चाहते हुए

भी हमें उसी वर्ग के पास जाना पड़ता है, उसी वर्ग का नाम हमें याद आता है, और खैर ना चाहते हुए हम चले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं उसी खास वर्ग का जिसने पूरी दुनिया में हम सब की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली हुई है। जी हाँ, बात कर रही हूँ नेशनल डॉक्टर्स डे को लेकर। आज के दिन भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है, और ये दिन चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टरों के अमूल्य योगदान और हमारे स्वास्थ्य के प्रति उनके समर्पण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत 1991 में हुई थी। भारत सरकार ने महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में इस दिन की स्थापना की थी। डॉक्टर रॉय के साथ आज का दिन कुछ खास तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक ऐसा दिन है आज का जिस दिन उनका जन्म हुआ था, साल 1882। जी हाँ, 1882 में आज ही के दिन डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का जन्म हुआ था, और यही वो दिन है, जी हाँ यही वो दिन है जिस दिन इस महान व्यक्ति ने, महान चिकित्सक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, और उनके महान कार्यों को लेकर हम उन्हें याद करते हैं। डॉक्टर्स डे के तौर पर आज के दिन को मनाया जाता है। तो ये तो खास दिन डेडिकेटेड है उन चिकित्सकों के नाम, जी हाँ उस खास वर्ग के नाम जिन्हें भले ही हम ठीक ठाक हालत में रहते हुए याद नहीं करना चाहते, लेकिन जैसे ही हमारी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है, नासाज होती है, और हम परेशान हो जाते हैं, और ऐसे में उसी वर्ग का ख्याल हमें आता है जिनके बारे में हम आसानी से सोचना भी नहीं चाहते। और ये एक अजीब सा विश्वास हमारे मन में है कि जैसे ही हम डॉक्टरों के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाएंगे, उनका चेहरा देखकर या फिर उनके हल्के से छुअन से ही हमारा जो शरीर है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, और जितनी भी परेशानियां हैं हमारे शरीर के अंदर उनके चिकित्सा करने से बिल्कुल ठीक ठाक हम हो जाएंगे, और दोबारा से हम हमारे जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में हम लौट कर आएंगे। यही विश्वास लेकर हम सब इस वर्ग को आज के दिन याद कर रहे हैं। वैसे तो आज के दिन ही नहीं बल्कि 365 दिन 2400 घंटे इस वर्ग को याद करना ज़रूरी है, क्योंकि यही एक वर्ग है जो कि हमारे स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी लिए हुए है। और एक और वजह के बारे में भी बात करूंगी कि आखिर एक और वर्ग ऐसा है जिसने हमारे खुशियों की जिम्मेदारी ली हुई है, और ये जो खुशियां हैं, ये खुशियां जुड़ी हुई हैं हमारे प्रियजनों के संदेशों को लेकर। जी हाँ, ये एक ऐसा वर्ग है जो कि हमारे प्रियजनों के संदेश को हम तक, हमारे घर के दरवाजे तक पहुंचाते हैं। अब शायद और ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अब किस वर्ग के बारे में बात करूंगी। खैर, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल एक गीत सुनवाऊं आपको, उसके बाद बातें करेंगे इस खास वर्ग को लेकर। इसके अलावा एक और वजह से आज का दिन अगर मैं कहूँ तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि पूरे हफ्ते की बात करनी होगी। जी हाँ, 1 से 7 जुलाई तक मनाया जाता है एक खास उत्सव, बात करूँगी उसके बारे में भी। लेकिन फ़िलहाल एक प्यारा सा गीत जिसमें आवाज़ है लता मंगेशकर और कुमार शानू की।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

10:10 है स्टूडियो की घड़ी का समय और फिर से एक बार शर्मिशा करती है आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। सुन रहे हैं कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप और चलिए इस वक्त बात कर लेते हैं उस वर्ग के बारे में जिसके बारे में मैं बता रही थी कि जी हाँ, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान लाने का दायित्व उस वर्ग के कंधों पे होता है। बात कर रही हूँ राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस इस दिन को लेकर, और हर साल आज ही के दिन मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे के तौर पर। ये दिन सभी डाक कर्मियों जैसे डिलीवरी एजेंट हो गए या फिर क्लर्क की कड़ी मेहनत और समर्पण को सम्मानित करने के लिए समर्पित है, जो हर मौसम में लोगों तक डाक और पार्सल पहुंचाते हैं। और अगर भारत में इसके संदर्भ की

बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में आज के दिन को विशेष राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन भारत में डाक कर्मियों के सम्मान के लिए भारतीय डाक दिवस अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ये दिन 1854 में स्थापित भारतीय डाक विभाग की उपलब्धियों और लोगों को जोड़ने में उसकी भूमिका को समर्पित करता है। इसके अलावा भारत में डाक कर्मी सिर्फ और सिर्फ चिट्ठियां तो नहीं पहुंचाते, है ना, वे बैंकिंग, जीवन बीमा और सरकारी योजनाओं के लाभ देश के अंतिम छोर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये तो थी नेशनल पोस्टल वर्कर डे को लेकर बात। और इसके अलावा जी हाँ, जैसे कि मैं बता रही थी कि सिर्फ और सिर्फ आज का दिन नहीं बल्कि 1 से लेकर 7 जुलाई तक मनाया जाता है एक खास दिन, यानी कि वन महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है ये पूरा सप्ताह है। और महा उत्सव मनाने के पीछे का कारण तो बस वही है जिसके बारे में हम सालों से जानते आए हैं, और फिर एक बार इस उत्सव को मनाते हुए वनों की ज़रूरत, वनों के महत्व को फिर एक बार समझे जाने और लोगों तक वनों के संदेश को पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिनके बगैर जीवन नहीं, उस के बारे में, उस कुदरत के खूबसूरत तोहफे के बारे में जानना, समझना, संदेश को लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वन के महाउत्सव और ज़रूरत की अगर बात करें तो खैर ये जो विषय है इतना विशाल है कि इसके बारे में बात करते करते शायद कार्यक्रम का समय ही समाप्त हो जाए, लेकिन उसके बावजूद वन आखिर हमें क्या देते हैं, नहीं देते हैं, इसके बारे में तो विशाल चर्चा की जा सकती है। और हम सब मोटा मोटी तौर पर ये जानते ही हैं कि वन हमारे लिए कितने ही ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये सारी बातें जानने के बाद भी जाने अनजाने हम इंसानों से ये गलती हो ही जा रही है कि वनों का नुकसान हमारे हाथों हम करते जा रहे हैं, और इसका परिणाम आज नहीं बल्कि आने वाले समय में हमें मिलने ही वाला है। और इसी नुकसान से बचने के लिए, इसी नुकसान को रोकने के लिए आज नहीं बल्कि पूरे सप्ताह को मनाते हुए ये संदेश लोगों तक दिया जाता है। तो चलिए फिर एक बार रुख करते हैं फिल्मी गीत की ओर, और उसके बाद बात करूंगी कि बॉलीवुड की दुनिया में आखिर आज के दिन कौन मना रहे हैं अपना हैप्पी वाला बर्थडे। फिलहाल सोनू निगम, अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत आप सभी सुनने वालों के लिए।

तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर। एफएम रेनबो पर।

दस कर बज कर 44 मिनट है स्टोरी घड़ी का समय। और फिर एक बार शर्मिशा आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करती है। चल रहा है कार्यक्रम नॉनस्टॉप गपशप। और चलिए इस वक्त इस कार्यक्रम में बात कर लेते हैं हैप्पी बॉलीवुड बर्थडे को लेकर। और बताऊं इस वक्त की बॉलीवुड की दुनिया में आखिर कौन अपना हैप्पी वाला बर्थडे मना रहे हैं। वैसे तो एक नहीं बल्कि दो अलग अलग शख्स हैं जो मना रहे हैं आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और संयोग की बात तो ये है कि दोनों कलाकार संगीत की दुनिया से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, सबसे पहले बात करना चाहूँगी एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें हम बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की आवाज़ के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, और सिर्फ संगीत की दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनका खुद का भी एक टैलेंट है जिस वजह से उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने में मदद मिली। और उनके इस जाने माने टैलेंट की वजह से ही वे अपनी दुनिया में इतने कामयाब रहे। खैर, संगीत तो उनका गुण था ही, लेकिन एक और गुण भी है जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड की दुनिया में अपने पैरों को जमाने में और ज़्यादा आसानी हुई। बात करूँगी इस शख्स को लेकर भी, लेकिन फ़िलहाल सुनवाऊँ आपको एक प्यारा सा गीत।

0: तुमसे एक रुपया क्या मांगा, तुमने तो लेक्चर दे डाला।
1: तुमने जरा भी ध्यान दिया मैंने फ्री में तुमको कितना ज्ञान दिया? वरना सोचो, जिसके पास एक रुपया ना हो वो चाहे हो जीता मरता उससे कोई बात भी करता।

दस रुपए का सवाल है बाबा, दस रुपए का सवाल है। तेरे शेयर्स का भाव चढ़े, तेरी इनकम बहुत बढ़े।

जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं आप। क्रेजी फोर फिल्म से सुदेश भोसले और साथियों की आवाज में सुन रहे थे आप इस गीत को। बात कर रही हूँ प्लेबैक सिंगर सुदेश भोसले को लेकर, जो मना रहे हैं आज अपना हैप्पी वाला बर्थडे। बॉलीवुड के प्लेबैक सिंगर और मिमिक्री आर्टिस्ट सुदेश भोसले किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वे टैलेंट का खजाना कहे जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ कई गाने गाए हैं बल्कि वे अमिताभ बच्चन से लेकर अनिल कपूर तक की आवाज भी बनने का उन्हें मौका मिला। इसके अलावा एक और शख्स भी है, जैसे कि मैं बता रही थी कि फिर एक बार संगीत की दुनिया से ही उनका नाम जुड़ा हुआ है और जिन्हें आज के नौजवानों के दिल की धड़कन कहा जाता है। बात कर रही हूँ सिंगर मोहम्मद इरफान की, जिन्होंने आज के समय में ढेरों गाने गाए हैं और सिर्फ गाए ही नहीं बल्कि नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं मोहम्मद इरफान। और सुनवाऊंगी आपको उनके आवाज़ में भी एक बहुत ही प्यारा सा गीत। तो चलिए, हैप्पी वाला बर्थडे जब हम मना रहे हैं तो सभी श्रोताओं की ओर से इन दोनों कलाकारों को अपने जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं।

जाने से पहले माइकल जैक्सन के फैंस के लिए एक ख़ास खबर। अगर आप माइकल जैक्सन के फ़ैन हैं और उनके जीवन को और ज़्यादा करीब से जानना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हीं की बायोपिक अब आप OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, क्योंकि 30 जून थिएटर में ज़बरदस्त कामयाबी के बाद माइकल जैक्सन की बायोपिक माइकल अब OTT पर आ चुकी है और ये इस साल की सबसे बड़ी ग्लोबल हिट फिल्मों में से एक रही। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आसानी से घर बैठकर देख सकते हैं। और माइकल जैक्सन के जीवन को और ज़्यादा करीब से अगर जानना चाहते हैं, माइकल जैक्सन की कृतियों को और ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं, तो ये जो बायोपिक है ये आपके लिए हो सकती है, जो कि 30 जून से OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के इस कार्यक्रम को, यहीं पर समाप्त मिल रहे हैं। बहुत जल्द समय रहेगा 11:10 लेकर आऊँगी कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपने ट्यून करना है 100.1 FM गोल्ड। समय रहेगा 11:10, तब तक के लिए ट्यून रहेगा 107 FM रेनबो चैनल के साथ। सुन रहे थे नॉन स्टॉप गपशप शर्मिशा के साथ।

किंग के साथ क्लिंटन केरजो की आवाज में इस गीत के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेल फ्रेंड्स, 107 एफएम रेनबो दिल से दिल तक म्यूजिकली योर्स पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम शुरू हो चुका है 3 का तड़का, और तड़का लगाने मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट देविका। फिलहाल आप सभी को बता दूं कि इस गीत के साथ, बॉडीगार्ड फिल्म के इस गीत के साथ आप सभी का स्वागत हो चुका है इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में आज के लिए हमारे पास हैं ढेर सारे खूबसूरत बेहतरीन तराने, तो एक के बाद एक सुनने के लिए आप हो जाएं तैयार, क्योंकि आज है बुधवार की दोपहर, और इस दोपहर में 3:09 स्टूडियो की घड़ी में समय कार्यक्रम 3 का तड़का देविका के साथ।

वेल फ्रेंड्स, फिल्म एक पहेली लीला से आप सुन रहे थे इस गीत को 107 एफएम रेनबो पर तीन का तड़का कार्यक्रम के अंतर्गत। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में अगला गीत भी बहुत ही खूबसूरत है। ये गीत जो था, इसके बारे में पहले बता दूं कि तुलसी कुमार की आवाज में आपने सुना फिल्म एक पहेली लीला से ये गीत। और ये जो गीत है, इस गीत में ऑन स्क्रीन जो है वो नजर आई थी सनी लियोन। और आपको बता दें कि ये फिल्म जो थी, ये पुनर्जन्म के साथ साथ और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज को लेकर थी, और इसीलिए इसका नाम था एक पहेली लीला। वेल फ्रेंड्स, फिलहाल आज की अगली फिल्म के विषय में आपको बता दूं कि आज जो अगला गीत आप सुनेंगे, ये गीत किस फिल्म से है और किस पर फिल्माया गया है।

वेल फ्रेंड्स, अगला जो गीत आप सुनेंगे, इस गीत में आवाज है रोमी के साथ तनिष्क बागची की। ऑन स्क्रीन जो है वो नजर आ रही हैं कृति सनन, और उनके साथ ऑपोजिट नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर। वैसे ये जो जोड़ी है ये बड़ी कमाल की लगी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में, लेकिन ये फिल्म ये जो जोड़ी है ये ऑन स्क्रीन एक बार फिर अभी रिसेंटली रिलीज फिल्म कॉकटेल 2 में भी नजर आ रही है। वैसे कॉकटेल 2 में लव ट्रायंगल का मामला तो दिख ही रहा है हमें, हमने बहुत सारे गीत भी देखे हैं। अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको स्टोरी तो पता ही होगी ही, लेकिन फिर भी बता दूं कि इस फिल्म में है शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना। साथ ही ये फिल्म रिलीज हुई है 19 तारीख को, अभी 19 जून को ही, और इस फिल्म ने 150 करोड़ के बजट के साथ इस फिल्म को शूट किया गया, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अभी तक मतलब विदिन 2 वीक्स ऑलमोस्ट इस फिल्म ने कमा डाले हैं 126.38 करोड़। मतलब एक तरह से मान सकते हैं 130 करोड़ तो इन्होंने ऑलरेडी 2 सप्ताह में ही कमा लिए। आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया है होमी आजानिया ने, और साथ ही इस फिल्म को लिखा है लव रंजन और तरुण जैन ने। साथ ही इस फिल्म में जो ये एक्टर्स हैं, इन तीनों एक्टर्स को ऑन स्क्रीन देखकर बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि इनके लुक बहुत खूबसूरत बनाए गए हैं, और साथ ही फिल्म के गीतों को बहुत ज्यादा पसंद किया गया है और प्रीतम ने इन सभी गीतों को धुन में पिरोया है। फिलहाल जब बातें हुई हैं इतनी सारी तो आपको एक के बाद एक 2 गीत सुनाऊंगी। एक आप सुनेंगे फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से, और दूसरा गीत इसी फिल्म यानी कि कॉकटेल से। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए 2 गीत कर रहे हैं इंतजार। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर, कार्यक्रम 3 का तड़का देविका के साथ।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, 107 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

वेल फ्रेंड्स, शाहिद कपूर के साथ नजर आई थी ऑन स्क्रीन विद्या बालन इस फिल्म में, और ये जो जोड़ी थी किस्मत कनेक्शन ने बनाई थी। आपको बता दें फिल्म का नाम किस्मत कनेक्शन, गीत में आवाज थी मोहित चौहान के साथ श्रेया घोषाल की, और ये गीत जो है बहुत ही प्यारा, बहुत ही रोमांटिक गीत है इस फिल्म का, और इस तरह से किस्मत जो है वो कनेक्टेड कर देती है विद्या बालन और शाहिद कपूर को। यही थी स्टोरी लाइन इस फिल्म की। आप सुन रहे हैं 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकल यॉर्स पर कार्यक्रम 3 का तड़का।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, टीम का तड़का, टीम का तड़का, टीम का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

वेल फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे अदिति पॉल और साहिल हाडा की आवाज में ये गीत, जो गीत था फिल्म रामलीला से। जी हाँ, वही फिल्म जिसमें दीपिका पादुकोण के साथ रणवीर सिंह ऑन स्क्रीन नजर आए थे और ये फिल्म संजय लीला भंसाली ने बनाई थी। और आपको बता दें कि ऐसे ही तरह ने आप सभी सुन रहे हैं एक के बाद एक कार्यक्रम तीन का तड़का है जारी। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगला गीत है फिल्म दृश्यम से। जी हाँ, दृश्यम ये साल 2015 वाली जो आई थी ना, पहला पार्ट जो था वो, उस फिल्म से हम लिए ले रहे हैं इस गीत को। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म है अजय देवगन के साथ तबू, शिया सरन, ईशिता दत्ता और मृणाल जाधव के ऊपर फिल्माया गया। तो आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म ने 107 करोड़ का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पे किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म का बजट कितना था? जी हाँ, बहुत ही कम, इसके आधे से भी कम। जी हाँ, 38 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म। अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए काफ़ी फेमस है क्योंकि इस फिल्म में 108 करोड़ ही हम इसको समझ सकते हैं। तो 108 करोड़ के करीब का बिजनेस किया था। आपको बता दें 31 जुलाई

2015 को ये फिल्म जो है रिलीज हुई थी। और ये जो फिल्म है, ये फिल्म आई थिंक हम लोगों में से कईयों ने एक से अधिक बार देख चुकी है, क्योंकि ये जो फिल्म थी, इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन है वो तो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। साथ ही साथ जिस तरह से अजय देवगन ने यहाँ एक्टिंग की है वो भी काबिल तारीफ है। अजय देवगन की एक्टिंग के साथ साथ हर जो सीक्वेंस है वो काफी हद तक मैच भी करता है, और गोवा की ब्यूटी यहाँ देखने को मिलती है। तो फिलहाल दोस्तों आपको इसी फिल्म से पेश है, सुनाती हूँ ये गीत, जो गीत है ऐश किंग की आवाज में, आप सुनेंगे कार्बन कॉपी।

गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, तीन का तड़का, तीन का तड़का, तीन का तड़का, बरो 7 FM रेनबो पर, रेनबो पर।

वेल फ्रेंड्स, फिल्म थैंक गॉड से आप सुन रहे थे ये गीत। और आपको बता दें कि जुबिन नौटियाल के साथ योहानी और साथ ही सूर्या रघुनाथन की आवाज में ये गीत था। आपको बता दें मेलोडी भी इसमें अपनी आवाज दे चुके हैं। और साथ में आपको बता दें दोस्तों, ये जो गीत था ये गीत योहानी के एक फेमस गीत पर आधारित करके बनाया गया था फिल्म थैंक गॉड के लिए, क्योंकि ये जो गीत था वो सडनली बहुत ही लोगों को पसंद आने लगा था जो दूसरी भाषा में था, और फिर उसे हिंदी में बनाया गया जिसमें जुबिन नौटियाल के साथ योहानी, सूर्या रघुनाथन और मेलोडी की आवाज थी। तो फिलहाल दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 3:55 और 22 सेकंड, यानी कि आज के कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है आप सभी के लिए। आप सुन रहे 107 FM रेनबो, दिल से दिल तक म्यूजिकली ऑर्स पर कार्यक्रम 3 का तड़का। फिलहाल 3 का तड़का से देविका लेती है आपसे इजाजत। फिलहाल आप सुनेंगे इस गीत को जो कि है फिल्म जुनूनियत से। फिल्म के इस गीत में जो आवाज है वो है मीत ब्रदर सज्जान के साथ साथ नीरज श्रीधर और तुलसी कुमार की। तो आइए सुनते हैं इस गीत को और दीजिए अभी के लिए मुझे इजाजत।

हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ ठीक 7:02 मिनट पर लेकर छाया लोक पर। छाया लोक की शुरुआत से पहले आज वैसे है वेडनेसडे का दिन, यानी हम साथ साथ जोड़ियों के बारे में बातें करेंगे, अतरंगी जोड़ियों के बारे में बातें करेंगे थोड़े से हट के जो है, पर उससे पहले सुन लेंगे एक विशेष कार्यक्रम। उसके बाद फिर 7:30 के बाद जरूर मिलते हैं। फोन कॉल्स के लिए रेडी रहिएगा, रिक्वेस्ट लेके रेडी रहिएगा, साथ ही साथ अपनी जोड़ियों के बारे में बताने भी रेडी रहिएगा।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। नए महीने जुलाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका कार्यक्रम उमंग में। आइए शुरुआत करते हैं एक सुविचार के साथ, जिसे हमें भेजा है आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। लिखते हैं,
2: सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प में है।
0: धन्यवाद आपके इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से। जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास और धनवंतीन बाई जी का। लिखते हैं, जय जोहार बंदगी

0: विमलेश मैडम जी, अजीत साहेब जी, जय हिंद जी। आगे लिखते हैं,
1: उमंग टीम को बधाई जी। उमंग कार्यक्रम में 3 जून 2026 को पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के पर्यावरण के प्रति लगाव वाली कहानी ने दिल छू लिया। हमें बहुत प्रेरणा और सीख मिली। आपने बहुत प्रेरणादायक और रियल स्टोरी सुनाई। धन्यवाद साहेब।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, अजय देवता मुरिया, तुषार देवता मुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
1: इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और नीलिमा अजीम।
0: और पुणे से सुयोग बटवे।
1: धन्यवाद आप सबका संदेशों के लिए।
0: स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न खनिज पदार्थों की, और इस क्रम में हमने कल चर्चा की थी कोयले की, जिसे जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। तो अजीत जी, आज की चर्चा का विषय तो बताइए, किस खनिज की हम चर्चा करने जा रहे हैं? श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है।
0: उत्सुकता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि हमारा कार्यक्रम होता ही है मजेदार और जानकारियों से भरपूर। पता है, कुछ श्रोता तो रेडियो सुनते समय कागज कलम लेकर बैठते हैं और कुछ तो पूरा कार्यक्रम भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि कोई जानकारी न छूट जाए।
1: हम सभी सुधीर श्रोताओं को धन्यवाद देते हैं। तो क्या रहेगा आज हमारी चर्चा का विषय?
0: चलिए मैं कुछ हिंट देता हूँ। श्रोताओं जरा अंदाजा लगाइए, हिंट है, ये बहुत ही लोकप्रिय धातु है
1: जी,
0: मूल्यवान भी है। रंग इसका सुनहरा पीला है, सभी इसे बहुत चाहते हैं।
1: अजीत जी, वैसे तो और भी कई धातुएं मूल्यवान हैं, लेकिन यदि हिंट है कि ये पीले रंग का है और बहुत लोकप्रिय है, तो बात स्पष्ट हो गई है। कहीं आप गोल्ड या सोने की बात तो नहीं कर रहे हैं?
0: बिल्कुल सही है उत्तर आपका। जी हाँ, मैं सोने या गोल्ड की बात कर रहा हूँ। वैसे इसमें कुछ धातुएं मिला दी जाएं तो इसका रंग बदल भी सकता है। सोना पृथ्वी के बहुमूल्य खनिजों में से एक गिना जाता है। तो विमलेश जी, अब जानते हैं कि सोना बनता कैसे है?
1: अजीत जी, बेशक ये पृथ्वी के मूल्यवान खनिजों में से एक है, लेकिन एक बेहद रोचक और आश्चर्यजनक बात बता दूं कि कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं।
0: कोयला तो पृथ्वी पर बना, लेकिन सोना पृथ्वी पर बना ही नहीं, ये क्या बात हुई?
1: यही तो खास बात है अजीत जी। सोने की उत्पत्ति की कहानी धरती से नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में तारों की भीषण टक्कर और विस्फोट से हुई है। सोने की उत्पत्ति अरबों साल पहले सुपरनोवा यानी विशाल तारे के फटने और न्यूट्रॉन तारों की टक्कर से हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, अंतरिक्ष से विशाल तारों और उल्कापिंडों की टक्कर के कारण उत्पन्न धूल से सोना पृथ्वी पर पहुंचा है।
0: तो ये बात है, शायद इसीलिए सोने और चांदी को स्टार डस्ट भी कहते हैं।
1: जी,
0: जब ब्रह्मांड में कोई विशाल तारा या सुपरनोवा अपना जीवन चक्र पूरा करता है ना, तो भयंकर विस्फोट के साथ फट जाता है, और इस प्रक्रिया में अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पैदा होता है।
1: जब कोई तारा फटता है और दबाव और गर्मी इतनी अधिक हो जाती है कि हल्के तत्वों के परमाणु आपस में जुड़कर भारी परमाणु बनाने लगते हैं, इसमें एक नया तत्व बनता है जिसे हम सोना कहते हैं।
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, अब वो ये है कि यदि सोना अंतरिक्ष में पैदा हुआ या उत्पन्न हुआ, तो वो पृथ्वी तक पहुंचा कैसे?
1: ये जानना भी बहुत रोचक है। सोना पृथ्वी पर अंतरिक्ष से मुख्य रूप से तारों के टूटने और उल्कापिंडों की भारी बौछार, मीट्रोइड बॉम्बार्डमेंट के जरिए पहुंचा है।
0: इसी बात को चलिए थोड़ा विस्तार और देते। लगभग 4 अरब साल पहले अंतरिक्ष से सोने और अन्य कीमती धातुओं से भरे लाखों विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए।
1: जी,
0: इस भीषण बौछार के कारण उल्कापिंडों में मौजूद सोना पृथ्वी की ऊपरी परत में बिखर गया। आज हम जो भी सोना खदानों से निकालते हैं, वह इसी अंतरिक्षीय बारिश की देन है।
1: जी जी जी, सोना पृथ्वी की ऊपरी परत पर बिखर गया, लेकिन धीरे धीरे उस पर भी मिट्टी और चट्टानों की परतें जमने लगीं और सोना पृथ्वी की गहराइयों में चला गया। उसी सोने को अब हम खदानों से खोदकर निकालते हैं। अब सोने को ठोस रूप देने के लिए उसमें कई धातुएं भी मिलाई जाती हैं।
0: जी, सच्चाई ये है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सोना मानव सभ्यता के प्रारंभ होने से भी अरबों वर्ष पहले बन चुका था।
1: अजीत जी, सचमुच बड़ी अद्भुत कहानी है ना सोने की। एक और रोचक बात साझा करना चाहती हूँ। पता है श्रोताओं, सोने को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा पृथ्वी पर नहीं बनाया जा सकता। रसायन शास्त्रियों ने, जिन्हें एल्केमिस्ट कहा जाता है, शताब्दियों तक लोहे, तांबे और पारे जैसी सस्ती धातुओं को सोने में बदलने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमेशा असफल रहे, क्योंकि रासायनिक रूप से किसी धातु को सोने में बदलना असंभव है। मान्यता ये है कि प्राचीन काल में भारत में एक पत्थर पाया जाता था जिसे पारस पत्थर कहते थे। इसके स्पर्श मात्र से लोहा सोने में बदल जाता था।
0: जी, लेकिन अब आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति कर ली है कि आज के समय में परमाणु रिएक्टर के जरिए वैज्ञानिक कुछ धातुओं से सोना बना सकते हैं, लेकिन इस वैज्ञानिक प्रक्रिया में इतनी अधिक ऊर्जा और पैसा खर्च होता है कि 100 रुपए का सोना बनाने में लाखों रुपए लग सकते हैं।
1: एक बात और, शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इसीलिए उसे आकार देने के लिए उसमें तांबा, चांदी, जस्ता और निकेल जैसी धातुएं भी मिलाई जाती हैं। लेकिन एक बात तो है,
0: और वो ये है श्रोताओं कि जब आप सोना या स्वर्ण आभूषण देखते हैं तो याद रखिए, ये मूल रूप से पृथ्वी की वस्तु नहीं लेकिन अरबों वर्ष पहले हुई ब्रह्मांडीय घटनाओं का परिणाम है। इसीलिए ये बहुत कीमती मानी जाती है। दूसरे शब्दों में,
1: आपके हाथ के सोने की अंगूठी कभी किसी तारे के फटने या किसी महाविस्फोट का हिस्सा रही होगी।
0: जी, तो श्रोताओं ये थी जानकारी अंतरिक्ष की मूल्यवान वस्तु सोने की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से, प्रश्न है, सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं?
0: आप अपना उत्तर हमें हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो करना ना भूलिए। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की,
0: तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, अरावली की कहानी।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 7 की सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें अरावली पर्वत श्रृंखला की रोचक जानकारी दी गई है और बताया गया है कि पर्यावरण संरक्षण में इस पर्वतमाला की क्या भूमिका है।
0: अरावली की कहानी।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर है क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
4: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
5: यस मैम।
4: वाह, क्या बात है
6: मैम।
4: हाँ बेटी,
6: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
4: बिल्कुल कहा।
6: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
4: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
6: जी, पहाड़ी।
2: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
4: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
5: यस मैम।
4: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
5: अच्छा।
4: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
5: अच्छा।
4: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
5: अच्छा, मैंने भी देखा है।
2: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
7: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
4: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
6: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैल

0: राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
1: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात,
2: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
1: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
2: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
4: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
2: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
0: सॉइल इरोजन,
2: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही है।
1: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
2: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
0: जी मैम।
3: यस मैम।
2: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
2: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
4: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
2: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
2: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य है तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
2: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह।
2: अब जैसे जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
1: जी,
2: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
0: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
0: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। तो डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
0: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है

0: चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को, जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है बांगुई।
2: ये कार्यक्रम अफ्रीका की एक लोक कथा पर आधारित है, जिसके द्वारा संदेश दिया गया है कि पर्यावरण को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम एक सुंदर नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: अफ्रीका महाद्वीप का नाम तो आपने सुना होगा। उसके पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा देश है घाना। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा के निकट होने के बावजूद घाना में सूखे की नहीं बाढ़ की समस्या प्रबल रहती है। कई छोटी बड़ी नदियां इस देश से होकर बहती हैं और इसे हरा भरा बनाए रखती हैं, लेकिन अक्सर इन नदियों में बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव डूब जाते हैं। आज सुनते हैं व्हाइट वोल्टा नदी के किनारे बसे एक ऐसे ही गांव के आदिवासियों की कहानी।
1: नमस्कार भाई।
2: नमस्कार भाई। नमस्कार।
1: इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेत में काम करने का समय नहीं हुआ।
2: अरे आज खेतों में नहीं, जंगल में काम करने जा रहा हूँ। ये देखो कुल्हाड़ी।
1: अरे ये क्या, हल वाले हाथ में कुल्हाड़ी लकड़ी काटने जा रहे हो? क्या नया घर बना रहे हो?
2: हाँ भैया, नया घर तो बन रहा है, लेकिन मेरा नहीं, अपने मुखिया बानगुई है ना, वही अपना नया घर बनवा रहे हैं।
1: मुखिया बांगुई का नया घर? लेकिन अभी कुछ ही बरस पहले तो उन्होंने नया घर बनवाया था।
2: तो क्या हुआ, उन्हें अपना वो नया घर अब पुराना और छोटा लगने लगा है। दरअसल जंगल की लकड़ी बेच बेच कर रईस हो गए हैं ना, सो अपनी रईसी की शान दिखाने के लिए फिर नया मकान बनवा रहे हैं।
1: अच्छा तो ये बात है, मुखिया बांगुई ने ही पैसे के लालच में शहर के लोगों को जंगल से लकड़ी काटने की अनुमति दी है। तभी मैं कहूं कि जंगल से आजकल दिन रात लकड़ी काटने की आवाज क्यों आती है? इस तरह तो जंगल के सारे पेड़ कट जाएंगे।
2: अरे और नहीं तो क्या, जंगल से जिस तरह से ये शहरी लोग दिन रात लकड़ी काट रहे हैं ना, देखना थोड़े दिनों में सारा जंगल साफ हो जाएगा। अरे जंगली जानवर गांव पर हमला करेंगे, नदी की धारा जंगल की रुकावट ना पाकर गांव की तरफ बढ़ने लगेगी।
1: और ये सब जानकर भी तुम कुल्हाड़ी लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ भैया, और क्या करूं, मेरे पास खेत तो है नहीं। मुखिया बानगुई के खेतों में काम करता था, लेकिन उन्हें अब खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें जंगल की कटाई से काफी पैसे मिल जाते हैं ना, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने भी लकड़ी काटना शुरू कर दिया है भैया। फिर शहर के लोग लकड़ी काटने की मजूरी भी अच्छी देते हैं।
1: पर तुम तो मुखिया के मकान के लिए लकड़ी काटने जा रहे हो?
2: हाँ, मुखिया का ये नया मकान शहरी लोग ही बनवा रहे हैं ना, मुखिया ने उन्हें जंगल से लकड़ी काटने की आज्ञा दी है, इसलिए वो लोग उन्हें ऊंची वाली चट्टान पर एक बहुत बड़ा तिमंजिला मकान बना कर दे रहे हैं।
1: तिमंजिला मकान? वो तो बहुत ऊंचा होगा।
2: हाँ, हमारे तीन मकान एक के ऊपर एक रख दिए जाए, इतना ऊंचा होगा।
1: लेकिन ये मकान नदी के इतने नजदीक क्यों बनवा रहे हैं? अगर नदी में बाढ़ आ गई तो?
2: अरे भैया, बाढ़ आती है तो तबाही हमारे कच्चे झोंपड़ों की होती है ना, ऊंची चट्टान पर बने तिमंजिले मकान पर बाढ़ का क्या असर होगा भला? फिर हमें से क्या भैया, हमें तो अपनी मजूरी से मतलब है। अच्छा चलता हूँ, बड़ी देर हो गई।
1: अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ।

0: ए कहां बड़े चले आ रहे हो? अरे जानते नहीं ये मुखिया बानगुई का मकान है?
1: जानते हैं भाई, जानते हैं, तभी तो अपनी फरियाद लेकर यहाँ आए हैं।
0: मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। इस समय कोई फरियाद वरियाद नहीं सुनी जाएगी। अभी मुखिया जी बांसुरी बजा रहे हैं, और जब वो बांसुरी बजा रहे हों तब उन्हें तंग करने का हुक्म नहीं है।
1: लेकिन अगर मुखिया जी हमारी फरियाद नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएंगे भैया?
0: अच्छा भाई बोलो, क्या बात है, बोलो।
1: मैं बोलूं? अच्छा, देखो भैया, तुम भी तो हम ही में से एक हो। गांव की हालत तुमसे छुपी नहीं है। मुखिया जी के सारे खेत खाली पड़े हैं, उनमें काम करने वाले मजदूर बेकार हो गए हैं। जिनके पास थोड़ी बहुत अपनी जमीन थी, जहाँ खेती करके थोड़ा अनाज हो जाता था, उन सारे खेतों में बाढ़ का पानी भर गया है भैया। बारिश के मौसम में लकड़ी की कटाई का काम भी बंद हो गया है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं भैया, इसीलिए हम मुखिया जी के पास आए हैं।
0: अरे तो इसमें मुखिया जी क्या कर सकते हैं?
2: सुना है मुखिया जी के मकान के एक पूरे खंड में अनाज भरा है। अगर इस संकट के समय हम गरीबों को भी एक एक मुट्ठी अनाज मिल जाता तो।
0: अच्छा, और मुखिया जी क्या फाके करे? मैं कहता हूँ भाग जाओ यहाँ से। बढ़िया अनाज मांगने वाले, करो।
3: एक बार की बात है, उस इलाके में मूसलाधार वर्षा हुई और लगभग 4 दिनों तक चलती रही।
4: मुखिया जी!
5: बदतमीज, ऐसे क्या चिल्ला रहे हो?
4: माफ कीजिएगा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि।
5: ओहो, आप कुछ बोलो भी, क्या हुआ है?
4: गांव में चारों तरफ पानी भर गया है।
5: तो भरने दो।
4: गांव के सभी लोग, औरतें, बच्चे और मर्द गांव छोड़कर जा रहे हैं।
5: अरे तो जाने दो।
4: लेकिन मुखिया जी, इस मकान के चारों तरफ भी पानी है। अगर हम निकलकर जाना भी चाहें तो भी नहीं जा सकते।
5: अरे बेवकूफ, हम यहाँ से जाएंगे ही क्यों? इस ऊंची चट्टान पर बने 3 मंजिले मकान में पानी आएगा कैसे? हमारे पास यहाँ क्या कमी है? अरे खाना है, पानी है, और ये हमारी बांसुरी भी है।
4: लेकिन मुखिया जी,
5: वो तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बांसुरी बजा रहे हो तो हमें परेशान मत किया करो।
4: जी मगर
5: जाओ, चले जाओ यहाँ से।
6: मुखिया जी,
5: अब क्या है?
6: नीचे वाली मंजिल में बहुत पानी आ गया है।
5: तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ, सब चीजें दूसरी मंजिल पर ले जाओ, और हम 3री मंजिल पर जा रहे हैं।
4: मुखिया जी,
5: चैन नहीं लेने देंगे, अब क्या है?
4: जी वो दूसरी मंजिल पर भी पानी
5: चढ़ रहा है। अरे तो 3री मंजिल किस लिए है? देखो सब सामान ऊपर ले जाओ, हम छत पर जा रहे हैं।
4: माफ कीजिएगा मुखिया जी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। बूढ़ा कालू कह रहा है कि ये साधारण बाढ़ नहीं है, बल्कि नदी ने अपनी धारा बदल दी है। अब नदी इसी जगह से बहेगी, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। हम लोगों ने लकड़ी के तख्ते जोड़ जोड़ कर एक नाव तैयार की है, हम तो जा रहे हैं, आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं।
5: नालायक, डरपोक, अरे भाग रहे हो? इस महल को छोड़कर भाग रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग, मैं यहीं रहूंगा।
4: जैसी आपकी मर्जी।
5: अरे ये तो सचमुच चला गया, कहीं वो बूढ़ा कालू ठीक ही तो नहीं कह रहा? क्या नदी ने सचमुच अपनी धारा बदल दी है? छत से देखता हूं मैं। ये कैसा भयानक दृश्य है! दूर दूर तक जहां नजर जाती है पानी ही पानी, कहीं कोई नहीं, ना कोई आदमी, ना जानवर, ना खेत, ना जंगल। अगर मेरे इस मकान की 3री मंजिल में पानी में डूब गई तो। अरे ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है? नहीं, ये इतना मजबूत मकान भी गिर रहा।
7: भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे कहां जाऊं मैं? मैं ये पानी में डूब रहा हूं मैं। अरे मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अरे कोई है, कोई है? अरे बचाओ, बचाओ मुझे! अरे मैं डूब रहा हूं, डूब रहा हूं मैं। नहीं, ये क्या? ये लगता है कोई पेड़ अब भी अपनी मजबूत जड़ें धरती पर धंसाए बैठा है। अगर किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं तो मेरी जान बच सकती है। हाँ, मैं उसे पकड़ूंगा, मैं उसे पकड़ूंगा, किसी तरह मैं उसे पकड़ लूं। लेकिन ये पानी तो मुझे दूसरी तरफ बाहर ले जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा, उस पेड़ तक जाने की कोशिश करूंगा मैं। वो पेड़, आखिर पहुंच ही गया। यहां तो इस तरह के कितने ही पेड़ थे जो मैंने कटवा दिए, लेकिन ना जाने यही एक इकलौता पेड़ मुझे शरण देने के लिए कैसे बच गया। शायद मेरी आंखें खोलने के लिए, हाँ, शायद मेरी आंखें खोलने के लिए

0: बांगुई, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: इस विशेष स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम को इस सुनने के बाद चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं हमारे छायालोक की ओर। और आज है छायालोक का हम साथ साथ है।
2: हम साथ साथ
1: मैं आपके दोस्त पापी और अगले डेढ़ घंटे हम साथ चलेंगे उस सफर पर जहां फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं सुनती बल्कि कुछ ऐसे रिश्ते भी बन जाते हैं जो बरसों बाद भी दिल में वैसे ही बसे रहते हैं। जी हाँ, हम साथ साथ में बात करेंगे फिल्मी जोड़ियों के बारे में। जब भी दोस्तों फिल्मी जोड़ियों का जिक्र होता है तो सबसे पहले कुछ वही नाम याद आते हैं जिन्हें हमने अनगिनत बार सुना हुआ है, लेकिन आज हमने सोचा क्यों ना उन जोड़ियों की बात की जाए जिन्होंने शायद कम फिल्में साथ की मगर हर बार पर्दे पर आए तो लगा जैसे कहानी इन्हीं के लिए लिखी गई हो। जी हाँ, कुछ जोड़ियाँ ऐसी थी जो चुपचाप दिल में उतर आई। उनमें न शोर था न दिखावा, बस एक सच्चाई थी और शायद इसी वजह से आज भी जब उनकी फिल्में टीवी पर आती है तो चैनल बदलने का मन नहीं करता। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी जोड़ी से जिसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। अगर 70 और 80 के दशक में किसी ने आम इंसान की प्रेम कहानी को सबसे सहज तरीके से जिया तो वो थे फारूक शेख और दीप्ति नवल। इन दोनों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये कभी किसी फिल्म में सुपरस्टार नहीं लगे लेकिन बल्कि बिल्कुल हमारे आपके जैसे लोग लगे। कभी बस स्टॉप पर इंतजार करते हुए, कभी नौकरी की चिंता करते हुए तो कभी छोटी सी मुस्कान में पूरा प्यार समेटे हुए। साथ साथ कथा और चश्मे बदूर इन फिल्मों ने ये साबित किया कि प्यार जताने के लिए बड़े बड़े संवादों की नहीं सच्चे एहसासों की

जरूरत होती है। कहा जाता है कि कैमरा जब इन दोनों पर चलता था तो निर्देशक को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों इतने सहज थे कि अभिनय लगते ही नहीं थे, और शायद यही वजह है कि आज भी इनकी फिल्में जो हैं, फिल्मों के दृश्य जो हैं, वो पुराने नहीं लगते, क्योंकि सच्चे रिश्तों की कोई एक्सपायरी डेट भी तो नहीं होती। तो चलिए उसी सादगी और उसी मासूमियत को महसूस करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। और यहाँ हमारे श्रोताओं से सवाल यही होगा कि हम साथ साथ हैं भाई, जोड़ियों की बातें हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ आपकी सबसे प्यारी जोड़ी आपके साथ कौन है, और आपकी जो फेवरेट जोड़ी है, अतरंगी सी जोड़ी, जो हटके जोड़ी है, फिल्मी जोड़ी, वो कौन सी है? तो चलिए फटाफट कॉल कीजिए और फ़ोन पर बताइए, और साथ ही साथ गाने भी सुनिए।

दोस्तों कितना सुंदर एहसास होता है ना जब किसी रिश्ते में शब्द कम पड़ जाए लेकिन खामोशियां सब कुछ कह दे। फिल्मों में भी कुछ जोड़ियां ऐसी ही रही जिनका प्यार ऊंची आवाज में नहीं बोला बस आंखों से महसूस हुआ। ऐसी ही एक और जोड़ी थी अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की। आज के दौर में जहां हीरो अक्सर बड़े बड़े स्टंट करते नजर आते वहीं अमोल पालेकर ने एक ऐसे नायक की पहचान बनाई जो शर्माता भी था घबराता भी था और प्यार भी बहुत सादगी से करता था। छोटी सी बात और रजनीगंधा जैसी फिल्मों ने ये एहसास दिलाया कि प्यार किसी महल में नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में भी खिल सकता है। विद्या सिन्हा की मुस्कान और अमोल पालेकर की झिझक दोनों मिलकर ऐसी केमिस्ट्री बनाते थे जिसे देखकर लगता था कि ये करदार नहीं हमारे पड़ोस में रहने वाले दो लोग हैं और शायद इसी वजह से इनकी फिल्में आज भी उतनी ही अपनी सी लगती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत।

तो कौन सी जोड़ी है आपकी पसंद की, बताइए। फोन लाइंस खुली हुई है और हम इंतजार में हैं आपके कॉल्स के। तो दोस्तों, फिल्मों की अतरंगी जोड़ियों की, थोड़ी ऐसी जोड़ियों की बातें हो रही हैं जो कम फिल्में जिन्होंने साथ में किया पर एक छाप छोड़ गए। और फिल्मों में कुछ जोड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो बहुत ज़्यादा फिल्में, जैसे कि बताया, कि साथ नहीं करती लेकिन जितनी भी करती हैं उनमें दर्शकों का दिल जीत लेती है। ऐसी एक खूबसूरत जोड़ी थी शशि कपूर और राखी की। शशि कपूर की मुस्कान और राखी की गंभीर आंखें, दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था लेकिन जब ये साथ आए तो पर्दे पर एक अलग ही नज़ाकत दिखाई दी। कभी कभी हो या दूसरी फिल्में, इनकी मौजूदगी हमेशा कहानी में गरिमा और अपनापन लेकर आती। दिलचस्प बात यह है कि शशि कपूर अपने सह कलाकारों के साथ बेहद सहज माहौल बनाने के लिए जाने जाते थे। यही वजह थी कि उनके साथ काम करने वाली लगभग हर अभिनेत्री ने उनकी विनम्रता की तारीफ की। और राखी, उन्होंने हर रिश्ते को अपनी आंखों के भाव से जीवंत किया। तो चलिए, अब समय है हमारे अगले गीत का।

0: दोस्तों इसी के साथ हमारे पहले कॉलर भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चलिए देख लेते हैं कौन है। हेलो,
1: गुड इवनिंग काफिया जी।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: मैं मुनीरुद्दीन लस्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण से खेल हो रहा
0: है जी। मुनीरुद्दीन दा कैसे हैं?
1: अच्छा है,
0: ठीक है, सब ठीक ठाक
1: है। व्हेन यू टॉक वी लव टू हियर, यू ब्रिंग सच जॉय एंड मेक थिंग्स क्लियर, योर जेंटल वॉइस इज ए सूथिंग साउंड, द बेस्ट किंग ऑफ प्लेस, তুমি বলছি কিছু আপনি মনে করবেন না, আপনার কোমল কণ্ঠস্বর এক শান্তিদায়ক ধ্বনি, এক এক পরম এক পরম শান্তি যা খুঁজে পাওয়া যায় আপনার মধুর কণ্ঠে, এটা মানে হলো
0: জি।
1: সো আই হিয়ার টু দ্য সং ফ্রম দ্য ফিল্ম রাম বলরাম 1980।
0: রাম বলরাম, রাইট?
1: রাম বলরাম ফিল্ম।
0: তো বতাইয়ে
1: কুমার আর আতা ভোসলে কা আজ মে
0: এসে সব ঠিক ঠাক হ্যায়, কোই ইস্যু নেই?
1: नहीं नहीं, सब ठीक ठाक है। कुछ पहले तो इंसिडेंट हो गया
0: जी
1: सौरपुल, सो मैं नॉट पार्टिसिपेट ऑफ योर प्रोग्राम,
0: नो प्रॉब्लम। तो राम बलराम का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: किशोर कुमार और आशा भोसले का रेली आवाज में हमसे भूल गई माफी दई दो।
0: ओके,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का
0: जी
1: म्यूजिक एंड आनंद बख्शी का है, मेरा प्यारा जोड़ी है अमिताभ बच्चन और रेखा।
0: ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मुनीरुद्दीन दा कॉल करने के लिए।
1: बाय,
0: थैंक यू, बाय बाय। तो ये थे मुनीरुद्दीन दा हमारे साथ, और सुनना चाहते हैं राम बलराम से गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। तो चलिए ये गाना सुन लेते हैं हम फटाफट, और इसके बाद 2 मिनट का एक ब्रेक भी ले लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक जो हमारा होता है, उसके बाद फिर वापस लौटते हैं छाया लोक के हम साथ साथ के साथ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छाया लो 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। छाया लो हम साथ।
1: तो वेलकम बैक, 107 FM रेनबो है ये और आप सुन रहे हैं छाया लोक के अंतर्गत हम साथ। और आज बात हो रही है ऐसी फिल्मी जोड़ियों की जिन्होंने फिल्में शायद एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं की, पर ऐसे एक्टिंग कर गए, जिन फिल्मों में काम किया वो हमारे दिल में छाप छोड़ दिया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले जोड़ी की ओर। जी हाँ, कभी कभी एक ऐसी प्रेम कहानी भी होती है जहाँ पे इजहार नहीं होता, न कोई लंबा इंतज़ार, बस कुछ चिट्ठियाँ होती है, कुछ टिफिन, और तो ऐसे लोग जो कभी ठीक से मिल नहीं पाते फिर भी दिल जुड़ जाते हैं। यही जादू था इरफान और निमृत कौर की द लंच बॉक्स में। इस फिल्म ने ये साबित किया कि प्यार हमेशा चेहरे देखकर नहीं होता, कभी कभी आदतों से, शब्दों से और इंतज़ार से भी हो जाता है। इरफान की शांत अदाकारी और निमृत कौर की सादगी ने इस कहानी को दुनिया भर में सराहा जाने वाला सिनेमा बना दिया। कई समीक्षकों का मानना है कि अगर अभिनय को सिर्फ आंखों से समझना हो तो द लंच बॉक्स एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी के साथ चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत भी।

न जाने क्यों कुछ रिश्तों का असर वक्त के साथ कम होने लगता है, और पर कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि समय के साथ उसका असर और भी गहरा हो जाता है। शायद इसीलिए कि उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया, वे बस अपनी सादगी से दिलों में उतर गए। फिल्मी दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी ही रही, न उनके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा शोर हुआ, ना सुपरहिट जोड़ी का तमगा लगा हर बार मिला, लेकिन जब वो पर्दे पर आए दर्शकों ने उन्हें अपना लिया। ऐसी एक और जोड़ी है संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी की। संजीव कुमार उन कलाकारों में से थे जो किरदार को जीते थे, निभाते नहीं थे। दूसरी ओर मौसमी चटर्जी की मुस्कान और उनकी सहज अदाकारी हर दृश्य में एक अपनापन भर देती थी। दोनों जब साथ आए तो लगा जैसे कहानी किसी फिल्म की नहीं, हमारे आसपास के लोगों की हो। इनके रिश्ते में ना बनावटीपन था ना नाटकीय था, बस एक परिपक्व एहसास था। दिलचस्प बात ये भी कि संजीव कुमार अक्सर कहा करते थे कि एक अच्छा कलाकार वही है जो अपने सामने वाले कलाकार को बेहतर बना दे। शायद यही वजह थी कि उनके साथ काम करने वाले लगभग हर कलाकार का अभिनय और निखर कर सामने आता। और अब इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं अगला गाना।

दोस्तों, कुछ फिल्मों में जोड़ियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें देखकर लगता है कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ये बेहद गंभीर, एक बेहद गंभीर, दूसरा बेहद सहज, लेकिन शायद यही फर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। ऐसी ही एक खूबसूरत जोड़ी थी विनोद खन्ना और डिम्पल कपाड़िया की। दोनों ने शायद दो ही फिल्में एक साथ की हो। 80 के दशक में जब दोनों साथ आए तो दर्शकों ने उनके बीच एक अलग ही आकर्षण महसूस किया। एक ये आकर्षण सिर्फ खूबसूरती का नहीं था, बल्कि दो बेहद मजबूत कलाकारों के आने का था। दिलचस्प बात ये कि दोनों अपने अपने करियर के ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां अनुभव ने अभिनय को और गहरा बना दिया। इसलिए जब भी ये पर्दे पर एक साथ दिखे, हर दृश्य में एक परिपक्वता, एक एक्सपीरियंस सा महसूस हुआ। तो वही कुछ जोड़ियां सिर्फ प्रेम में नहीं दिखती, वो भरोसा भी दिखाती है। तो इसी बात पर चलिए देखते हैं, सुनते हैं हमारा अगला गीत।

जैसा कहते हैं, हर प्रेम कहानी का अंत मिलन नहीं होता, लेकिन हर अधूरी कहानी भी अधूरी नहीं रह जाती। कुछ कहानियां लोगों की यादों में पूरी हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी लेकर आए थे हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन। सनम तेरी कसम जब रिलीज हुई थी तब बॉक्स ऑफिस पर उसे वैसी सफलता नहीं मिली जिसकी उम्मीद थी, लेकिन समय बीतता गया और यही फिल्म दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाती चली गई। आज सोशल मीडिया पर इस फिल्म के संवाद, इसके दृश्य और इसकी प्रेम कहानी बार बार याद की जाती है। यही तो सिनेमा का जादू है। कभी कभी दर्शक किसी फिल्म को रिलीज के कई साल बाद उसका असली सम्मान देते हैं। इस जोड़ी की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि दोनों बिल्कुल नए एहसास के साथ पर्दे पर आए थे। कोई बनावटी अंदाज नहीं, बस सच्चे जज्बात। तो चलिए अब उसी एहसास के साथ इसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना सुन लेते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में।

तो कभी कभी सोचती हूँ दोस्तों कि क्या किसी फिल्म की कामयाबी सिर्फ उसकी कहानी तय करती है? शायद नहीं, क्योंकि कई बार कहानी अच्छी होती है, संगीत भी बेहतरीन होता है, लेकिन अगर पर्दे पर दो किरदारों के बीच अपनापन महसूस ना हो तो दर्शक उनसे जुड़ नहीं पाते। और फिर कुछ जोड़ियां ऐसी भी होती है जो बिना किसी शोर शराबे के दिल में जगह बना लेती है, जैसे कि आज की अगली जोड़ी देवानंद और वहीदा रहमान की। देवानंद की बात करें तो उनके चेहरे के मुस्कान और चलने के अंदाज ही उनकी पहचान थी। वहीं वहीदा रहमान, जिनकी आंखें बिना कुछ कहे पूरी कहानी सुना देती थी। दिलचस्प बात यह है कि देवानंद हमेशा नए कलाकारों और नई कहानियों पर भरोसा करते थे। वहीदा रहमान के अभिनय की वो खुलकर तारीफ करते। जब दोनों ने साथ काम किया तो पर्दे पर ऐसा संतुलन दिखाई दिया जिसमें रोमांस भी था, सम्मान भी था और दोस्ती भी थी। इनके फिल्मों में प्रेम कभी हड़बड़ी में नहीं देखा, धीरे धीरे पनपता था, जैसे बारिश की पहली बूंद के बाद मिट्टी से उठती सौंधी सी खुशबू। आज के दौर में जब रिश्ते बहुत जल्दी बनते और टूटते दिखाई देते हैं, तब इनकी फिल्में याद दिलाती है कि इंतजार भी प्यार का एक खूबसूरत हिस्सा होता है। तो आइए उसी एहसास के साथ सुन लेते हैं फिल्म गाइड से ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

दोस्तों, फिल्मी दुनिया में कुछ जोड़ियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें लोग रिलीज के समय उतना नहीं समझ पाते, लेकिन वक्त के साथ वही फिल्में और वही कलाकार दोनों के दिलों में घर कर जाते हैं। ऐसी एक जोड़ी है विक्रांत मैसी और तृप्ति डिमरी की। लैला मजनू जब सिनेमा घरों में आई तब उसने कोई बड़ा बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड नहीं बनाया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता फिल्म की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। आज भी सोशल मीडिया पर इसके दृश्य, संवाद और गीत लाखों लोग साझा करते हैं। विक्रांत मैसी ने एक बार कहा था कि हर प्रेम कहानी का अंत खुश होना जरूरी नहीं, लेकिन उसका सच्चा होना बहुत जरूरी है। शायद यही बात इस फिल्म को अलग बनाती है। तृप्ति डिमरी की मासूमियत और विक्रांत का संयम, दोनों ने मिलकर प्रेम को एक नया अर्थ दिया। तो अब समय है उसी जज्बे को महसूस करने का। चलिए महसूस करते हैं।

दोस्तों जरा एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए तो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आया बहुत कम समय के लिए लेकिन उसकी याद हमेशा के लिए रह गई? फिल्मों में भी कुछ जोड़ियाँ बिल्कुल ऐसी ही होती है। एक है आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा की जोड़ी बधाई हो में, और दूसरी है इमरान हाशमी और श्रेया सिरन की जोड़ी आवारापन में। बधाई हो में इन दोनों की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, ना ही आवारापन में थी। ये उस पीढ़ी की कहानी थी जो परिवार, समाज और अपने सपनों के बीच संतुलन बनाना सीख रही है, और आवारापन में प्यार के साथ जो रिवोल्ट होता है सोसाइटी के अगेंस्ट में, उसके बारे में कहानियाँ थी। दोनों कलाकारों ने, दोनों जोड़ियों ने अपने किरदारों को इतना सहज रखा कि कहीं भी अभिनय का बोझ महसूस नहीं हुआ, और यही तो अच्छी जोड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है, जब कैमरा बंद होने के बाद भी किरदार हमारे साथ रह जाता है। आइए सुनते हैं बैक टू बैक दो गीत इसी को लेकर, बधाई हो से आयुष्मान खुराना और सानिया मल्होत्रा, और मुस्तफा जाहिद की आवाज में। तो फिर आओ आवारापन से

0: कार्यक्रम समाप्त होने लगा है और हमारे जो कॉलर हैं वो भी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुकी है। चलिए देख लेते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छायालोक में।
1: थैंक यू जी। मैं हावड़ा से सुप्रिया बोल रही हूँ।
0: जी सुप्रिया जी, कैसे हैं, सब ठीक ठाक?
1: सब ठीक है। आपको घर में सब ठीक ठाक है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: ठीक है, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। हेलो।
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए।
1: ये तो गोविंदा नीलम का जोड़ी अच्छा लगता है।
0: अच्छा।
1: हाँ, नाटक तो नीलम बहुत नाटक है। फिल बुली है
0: जी,
1: अच्छा लगता है दोनों का जोड़ी, अच्छा लगता है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो उनकी फिल्म का कोई गाना सुनना चाहती हैं?
1: वो फिल्म का जो सिंदूर फिल्म है ना, उसमें क्या गाना है, नाम सारे मुझे भूल जाने लगे
0: जी,
1: वो गाना है तो बजा दीजिए।
0: जी बिल्कुल। चलिए सुप्रिया जी, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू,
0: बाय बाय।
1: बाय बाय।
0: तो सुप्रिया जी थी साथ में और चलिए जो गाना उन्हें रिक्वेस्ट किया सुन लेते हैं लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज की आवाज़ में।

दोस्तों, अगर आज की महफिल ने आपको किसी पुराने गीत की याद दिलाई हो, किसी भूली हुई फिल्म को फिर से देखने का मन किया हो, या किसी अपनों का ख्याल दिलाया हो, तो समझिएगा कि हमारा साथ बिल्कुल सफल रहा। अब विदा लेने का समय आ गया है, मैं चलती हूँ, लेकिन जाते जाते क्या आपको यही कहूँगी कि रिश्ते हमेशा बड़े मौक़ों से नहीं बनते, वे रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों से बनते। एक फ़ोन कॉल, एक कप चाय, एक हाल चाल, और कभी कभी बिना किसी वजह के याद कर लेने से भी। इन्हीं खूबसूरत रिश्तों और यादगार फिल्मी जोड़ियों के नाम आज हमारा आखिरी गीत अनजाना अनजाने से आई फील गुड विशाल ददलानी और शिल्पा राव की आवाज़ में। और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, किसी और दिन किसी और समय कुछ और बात और गीतों के साथ आपसे वापस मिलूंगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मिलते हैं बस कुछ दिन बाद।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।
0: हाँ।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

0: तुम सब कौन से स्कूल के हो?
1: हम बंदर के स्कूल का है। बंदर
0: के स्कूल? शैतान, तुम बंदर के स्कूल का है?
1: हाँ।
0: तो तेरी दुम का है?
1: दुम गुम।
2: दुम गुम गुम गुम दुम गुम तुम